0: गोर्खा जिल्लाकै विश्वासिलो सुन चाँदी पसल
1: नारायण सुन चाँदी पसल बैंक रोड बस पार्क गोर्खा। फोन नम्बर 064-2420-670, मोबाइल नम्बर 98460।

0: Extreme energy drink.
1: वाराणसी 2083 को शुभ अवसर में हमारा संपूर्ण श्रोता शुभ चिंतक विज्ञापन दाता साझेदार संचार गृह सहित संपूर्ण दाजू भाई तथा दीदी बहनी युवाले सुखमय जीवन र प्रगति का लागि प्रेरणा प्रदान गर्नु सँगै हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु।
2: जॉय FM 90.4 MHz गोरखा नगरपालिका छ।

0: चॉइस एफएम 90.4 मेगाहर्ट्ज।
1: बड़ा दशैं 2083 को शुभ अवसर में हमारा संपूर्ण श्रोता शुभचिंतक विज्ञापनदाता साझेदार संचार गृह र सहकर्मी श्रमजीवी साथी सहित संपूर्ण नेपाली दाजुभाई तथा दीदी बहनी में यह चाड़ सुखमय जीवन र प्रगति का प्रेरणा प्रदान करोस् भन्दै हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
2: चोइस एफएम 90.4 मेगाहर्ज परिवार गोरखा नगरपालिका हरमटारी गोरखा।

0: गोर्खा जिल्लाकै विश्वासिलो सुन चाँदी पसल
1: नारायण सुन चाँदी पसल बैंक रोड बस पार्क गोर्खा। फोन नम्बर 064-2670 मोबाइल नम्बर 98-460-56-238।
2: वाराणसी 2083 को शुभ अवसर में हमारा संपूर्ण श्रोता शुभ चिंतक विज्ञापन दाता साझेदार संचार गृह सहित संपूर्ण दाजू भाई तथा दीदी बहनी योचारले सुखमय जीवन र प्रगति का लागि प्रेरणा प्रदान गर्नुहोस् भन्दै हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
3: ट्वाइस FM 90.4 MHz गोरखा नगरपालिका छ।